0: di perbatasan Lebanon pada Sabtu 2 Mei. Seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan juga kelompok Hizbullah, kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut masih melancarkan serangan drone dan roket terhadap pasukan Israel di Lebanon serta wilayah utara Israel. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 16 April serta diperpanjang hingga pertengahan Mei memang menurunkan intensitas konflik. Namun kedua pihak masih saling melancarkan serangan dan saling menuding pelanggaran kesepakatan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah restoran bertema horor di Varanasi tengah viral di media sosial dan menarik perhatian para pencari sensasi yang ingin merasakan pengalaman makan berbeda.
1: Restoran bernama Kankal Horror Restaurant ini menjadi sorotan setelah video yang ramai dibagikan di Instagram dengan konsep unik yang menghadirkan suasana menyeramkan di setiap sudut ruangan. Berbagai properti seperti hantu dan kerangka menggantung di seluruh area restoran. Para pelayan yang mengenakan kostum hantu dengan riasan menyeramkan bahkan menyapa pengunjung sambil menyajikan makanan.
2: यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि जो भूत हैं खुद खाना सर्व कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं जिससे कि लोग थोड़ा डर भी जा रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छा फील हो रहा था अच्छा भी लग थोड़ा डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था हर जगह ऐसा होता नहीं है।
1: Terletak di kawasan Chetganj, restoran ini telah mengumpulkan lebih dari 80 juta penayangan di media sosial, menjadikannya fenomena viral. Di tengah citra Varanasi yang dikenal dengan suasana religius dan tenang, restoran ini justru menawarkan sensasi adrenalin yang memicu beragam reaksi publik. Popularitas restoran ini menuai kontroversi, memicu perdebatan nasional mengenai etika pemasaran berbasis ketakutan. Meski demikian, pihak pengelola menegaskan konsep ini hanyalah hiburan semata.
3: ऐसे देखिए आजकल कंपटीशन भी है मार्केट में और बहुत सारी चीजें हैं तो हमारा कुछ ऐसा था कि कुछ अलग करना कस्टमर एक नॉर्मल मतलब हर रेस्टोरेंट हर जगह लोग जा रहे हैं खा रहे हैं तो एक नॉर्मल तरीके से होता है नॉर्मल वेटर आना सर्व करना तो फिर हम लोग सोचे कुछ यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट किया जाए कुछ यूनिक थ्रिल से रिलेटेड कुछ किया जाए तो हम लोग ने कस्टमर का अटेंशन पाने के लिए और कुछ उनको थ्रिल एडवेंचर देने के लिए तो फिर हमने ऐसा कुछ सोचा.
1: Menu yang disajikan tetap menghadirkan hidangan khas India Utara dan Chinese food, termasuk pilihan vegetarian serta layanan hingga larut malam. Namun, setiap sajian dibalut dengan pengalaman penuh kejutan yang memacu adrenalin. Meski menuai pro dan kontra, restoran ini tetap diminati terutama oleh kalangan muda yang mencari sensasi baru.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.